राग सारंग सदियों तो प्रचलित एक सरल मधुर अते लोकप्रिय राग है। अनेक लोक गीतां दियां धुनां इसे राग ते आधारित हैं। चरवाहियां दी वंजली अते सपेरे दी बीन उते इस राग दियां मधुर सुरावलियां आम सुनाई दिंदियां हैं। सपेरे दी बीन चों जदों सारंग दी धुन निकलदी है तां सप मस्त होके नच उठदा है। सारंग दा प्रभाव अति ठंडा है, इसलिए सिखर दुपहरे गाया जांदा है। गुरु महाराज ने सारंग राग विच मन दी तपश मिटा के ठंड वरताउण लई सारा मजमून ही गुरु शब्द दी महानता दा रख्या है। ये पता भी दिता है कि नाम दी कमाई सतसंगत विच ही हुंदी है। काल खाए कि छत्थों दे नानक राहो पछाणे से, इसका उपदेश इसे राग विच है। इस राग दे नादात्मक स्वरूप विच दोनों निषाद लगते हैं। गंधार अते धैवत वर्जित हैं। वादी ऋषव अते संवादी पंचम है। गायन समा है दिन दा तीजा पहर। सारंग राग विच पहले शब्द दा गायन कर रहे हैं प्रोफेसर परमजीत सिंह जी। शब्द दी आरंभिक तुक जप मन जगन्नाथ जगदीशरो अते दूसरे शब्द नूं गायन कर रहे हैं भाई दिलबाग सिंह भाई गुलबाग सिंह जी। शब्द दी पहली तुक है हर हर संत जना की जीवन। श्रवण करो पहला शब्द जप मन जगन्नाथ जगदीशरो।

महबूबे गरीबा तके गाहिबे सन माणे ते मान ताने ते तां तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी दंद मिल बैठे गुरु साहिब सिंह जो आप जी शोध दी चौं तुम उपरंत पंथ दिया दो सौ प्रसिद्ध हस्तियां गुरु आप जी ने सब गुरु पीरा जी दे नाल जोड़िया है नाल ही आदि संगीत दे नाल जोड़िया है भाई साहब जी भाई अमरीक सिंह जी जख्मी शाम जी ने आप जी ने बहुत सुंदर अंदाज के नाल थोड़े समय में बहुत कुछ आख्या है दासों प्रति भी बहुत कुछ कह दिता दास इस गल योग नहीं हैं हम रुलते फिरत को बात में पूछता दासों को होया कि ज्यादा तो ज्यादा दसम पातशाह जी की बाणी का गायन किया जाए दास पहला शब्द मेल करो तिन तेम हो जाए गरीब नवाज न दूस संतोषो पूल सिमो अमरी प्रभापन पूलन हार कहां को मोसो दस मात्र की बंदशाह जी जो बुलावे तो बोलो स्वामी आप जी अजाज बख्शो जी फतेह बाबा आप जी मकूल फतेह बख्शो शेख जितन कृतन अजाज बख्शो वाहे गुरु जी का खालसा।

अचल अविनाशी, सिमरन सोई पुरख अचल अविनाशी, जिस मृत दुर्मत मल नासी, सतगुर चरण कमल रित धारण, गुर अर्जुन गुण सहज विचारन, गुरु रामदास का क्यों प्रगासा।

बिना कहो को तरिया, बिन सदगुर कैसे पार परिया, बिन जिहवा कहां को बगता, बिन श्रवना कहां को सुनता।

बिन जगदीश कहां सुख भाला, नैन सलोनी सुंदर नारी, खोड़ सिंगार करे अत प्यारी, बिन जगदीश।

तीर्थ गवन करे। खटकर्मा ते दुगुणे पूजा करता नाए, रंग न लगी पार ब्रह्मता सर पर नरके जाए। राज

गया। बहुत धनाढ्य आचारवंत शोभा निर्मल रीत, मात पिता सुत भाइया साजन संग परीत, लश्कर तर

सूत कलहे न कीड़िया क्यों चब लंगाइए सावन रहन पंभीरिया क्यों पार बसाइए कुंजड़िया विसाख विच जो जू पर आइए बिन गुरमुक्त न हो वे बिन गुरमुक्त न हो वे।

0: तुम गिरना तद्र दानी दानी तुम दानी तुम दानी दानी दानी तुम दानी तुम दानी ताल तुम गिरना गिरना तुम गिरना तद्र दानी दानी तुम दानी ताल तुम गिरना तद्र दानी दानी तुम दानी ताल तुम गिरना तद्र दानी दानी तुम दानी ताल तुम
1: बागर दी बिकते मल बागर दी तुम तुम तुम गिरना बागर दी बिकते मल बागर दी तुम तुम तुम गिरना तुम तुम तुम गिरना तुम तुम तुम गिरना तुम गिरना तुम गिरना तुम गिरना तुम गिरना तुम गिरना तुम गिरना तुम गिरना तुम गिरना तुम गिरना तुम गिरना तुम गिरना तुम गिरना तुम गिरना तुम गिरना तुम गिरना तुम गिरना तुम गिरना तुम गिरना तुम गिरना तुम गिरना तुम गिरना तुम गिरना तुम गिरना तुम गिरना तुम गिरना तुम गिरना तुम गिरना तुम गिरना तुम गिरना तुम गिरना तुम गिरना तुम गिरना तुम गिरना तुम गिरना तुम गिरना तुम गिरना तुम गिरना तुम गिरना तुम गिरना तुम गिरना तुम गिरना तुम गिरना तुम गिरना तुम गिरना तुम गिरना तुम गिरना तुम गिरना तुम गिरना तुम गिरना तुम गिरना तुम गिरना त

थारा केवन के नहीं निवल भयंगम साधे मोहे दीन हर हर आराधे तेरा भरोसा प्यारे आन न जाना वैसा कि नहीं ग्रह तजवन खंड पाया कि नहीं मोन अवधूत सदाया कोई कह तो अनन भगवती मोहे दीन हर हर ओट लीती कि नहीं कया मैं कुले वडाई कि नहीं कया बां बो भाई कोई कहे मैं धने पसारा मोहे दीन हर हर आधारा कि नहीं भवन

0: तेरा कर्म जित भेजे साधु के चरण।
1: भगवान राम
2: पीरनी दी चुगी विच पहुंचे हैं। भगवान जिना रहा तू आयो ना रहा तू मैं सदके जा कुछ आदास छाया पीलनी ने त्रेता युग दे मालिक भगवान रामचंद्र जी बैठ गए। महाराज मैं गरीबनी ते बख्शिश कीती है ना नहीं पीरनी तेरे प्यार तेरी जे पीरनी भुख लगी है आखो श्रीवाल पीरनी डाडी भुख लगी कुछ खिला रब नू बड़ी भुख लगी बाबा जी कलेरां वाले बाबा जी बाबा नंद सिंह जी महाराज प्राप्ति वाले महापुरुष नाम जप के नाम दी प्राप्ति नाम जपना होर चीज है नाम दी प्राप्ति हो जेड़े परमार्थ दे राह ते तुरे नु भाई उना दे भी चरण चुमी है तुरे ता हन जेड़ा तुरया है ओही पहुंचण दी आस रख सकदा है कदे ना कदे सी ते जेड़ा परमार्थ दे राह ते तुरया ही नहीं है वो पहुंच किवें सकदा गल्ली बाती तो पहुंचया नहीं जांदा। भाई गुरदास जी ने लिखे है पूछ तो है पधक से मार्ग ना धरे पग प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए गल्लां नाल आजकल दी दुनिया गल्लां नाल ज्ञान चाहुंदी है पर भाई महापुरुषां दा कथन है गल्लां नाल ज्ञान नहीं मिलदा ज्ञान ना गली ढूंढिए कथना करड़ा सार ए तो बड़ी करड़ी मनसल है औखी काटी पर जेड़े तुर पैंदे हन ते करदे हन साईं दे मिलन दे कर्म चंगे फिर उन्हां नूं प्राप्ति हो जांदी है ज्ञान न गली ढूंढिए कथना करड़ा सार कर्म मिले तां पाइए होर हिकमत हुकम फुहार कर्म कर महापुरशां दी संगत करके सानू भाई चंगे कर्मां दी प्राप्ति हो जांदी है। कई कहंदे जी संतां दी महापुरशां दी संगत कीतियां की मिलदा है ते बाबा जी कहंदे सन केड़ी वस्तु नहीं मिलदी आखो श्री वाहिगुरु महापुरुषां दी संगत करके केड़ी वस्तु नहीं मिलदी चार पदार्थ जे को मांगे फिर हजूर कहंदे साध जना की सेवा लगी धर्म अर्थ काम मोक्ष फरीद नूं भी पता लगा सी कि कोई माता है वह दस लेंदी है अज रब तुठा है अज रब रुस गया है चलो मना उस माता कोल चलिए मैं रब नूं मनाउण वास्ते रब नूं रिझाउण वास्ते कई कर्म कीते हन पर अजे ज़ियारत नहीं होई कि ओ सिंगार मिलन के तहे।

सखी काजल हार तमोल सब किछ साजिया सोलह किए सिंगार के अंजन पाजिया जे घर आवे कंत सबो किछ पाइये हरे हां कंते बाज सिंगार सब बिरथ आ जाइए। पने पाछा धन गुरु अर्जुन देव दाता जे साई घर नहीं आया ता सिंगार किस देखे ते गुरु नानक दा प्यार अंदर आके नहीं वसया ता दुनियावी पदार्थ किसे लिखे नहीं किसे लिखे फरीदे दिल च खिच पई लभदा लभदा इस माता कोल पहुंच गया आ बेटा फरीद अज किवें आए मां मैं सुने तू दस देंदी है अज रब टुटा है या अज रब रुस गया मैनू भी दस रब नू मनाण वास्ते कई तरह दिया गालना गालियां पर मेरा साईं अजे नहीं मनीजिया रुसिया फिरदा है पर तू दस। तो इस माता ने किया बेटा फरीद बैठ जा बैठ गया तो माई प्राप्ति वाली सी प्राप्ति वाली बाबा जी बचन कर रहे सन भाई गुणा दा पूजन गुणा दा पूजन कई माइया ऐसिया उच्च जीवन वालिया सिमरन वालिया जिन्हां दे दर्शन कीतिया चेते आउंदा है सतनाम सूरबीर माता भागो वर्गी ए भी इहो जी कहन लगी फरीद की पुछदा है मां मैनू ये दस वे रब टुटदा किवें। इस माई ने कहा फरीद जिस दिन किसे साईं दे प्यार वाले दे दर्शन हो जाए किसे बख्शे रूह दे दर्शन हो जाए किस दिन खुदा परस दे दर्शन हो जाए साईं दे चरणां नाल जिसका मन जुड़िया फरीद जिस दिन उस महापुरुष दे दर्शन हो जाए तो समझ लै के अज मेरे उत्ते रब तुठा है आखो श्री वाहिगुरू।

इस माई ने कहा तीन लाभ प्राप्त होंगे। पहला तो बख्शियां रूहां दे दर्शन करके जीवन च ठंड पै जांदी। उठ फरीदा गवन कर दुनिया वेखण जा, मत कोई बख्शिया तुद मिले तू भी बख्शिया जा। दर्शन करके साध के संग नहीं किच काल, दर्शन पेटत होत नेहा। किसे माया तारी दे दर्शन करो ना, ओदी अमीरत दा असर पैंदा है। मन चंगी कार है, सूट चंगा पाया है, थदे विच चंगी अंगूठी पाई है हीरे वारी, ते ओदी अमीरत दा असर पैंदा है। पर ए अमीरत ए झूठी अमीरत ए सदा रहण वाली नहीं। दुनियावी तन ए असर रहण वाला नहीं। हजूर कहना काचा धन संचे मूर गवार, जिसने इस तन नु सब कुछ समझ, इस तन का खंडन नहीं है ए ना कोई समझे। पर प्यारी साध संगत निर्वाह मात्र बाबा जी कहते सन इसकी भी लोड़ है, पर असलियत भी तो सच्चे धन की लोड़ है। इस तन पानी डोब देंदा है, अग साड़ देंदी है, चोर चुक ले जाता है। पर जिन को सच्चा तन है, इस तन को तस्कर जोए न साके, ना उचक्का ले जाए, इन कोई चुक नहीं सके। अग्न न दहे पवन नहीं मगने, तस्कर नेड़ न आवे, राम नाम धन कर संचौनी, सो धन कतो न जावे, हमरा धन माधो गोविंद धरनी धर। कबीर जी कहते ए है सार धन कही है। जिन्हें को तन है ना, उन्होंने दर्शन कीतिया भी असर पैंदा। केड़ी चीज का ए सच्चा तन है, नाम रूपी उन्होंने जपिया महापुरुषा ने, हिरदे से बिठाया है नामी नू, जिस वेले उन्होंने दर्शन करते हैं चेते आउंदा सतनाम। आवे साहेब चित चित आउंदा, किस तरह चित आउंदा है? हजूर कहंदे आवे साहेब चित तेरिया भगता डिठिया, तेरिया भगता। तो फरीद पहला लावे, दूजा ला महापुरुषां दे बचन सुन ले, कमाई वाले बचन, परमेश्वर प्रेरण बचन। बाबा जी कहते सन जिहड़े महापुरुषां दे बचन होंदे ना परमेश्वर प्रेरण होंदे। जो जो बचन सुनिए मन परमेश्वर नाल जुड़दा जांदा। उत्तम श्लोक साध के बचन, अमलीक लाल ए रतन, सुनत कुमावत होत उधार, आप तरह लोक निसदा। ए दूजा लाभ। ते तीजा लाभ फरीद ए है कि फिर हथी महापुरुषां दी सेवा कर लिया। खुशी कबीर सेवा को दो भले, कबीर जी ने निर्णय कर दिता जे सेवा करनी है ना तो दो भी। महाराज किना किना दी तो कबीर जी लिखते कबीर सेवा को दो भले, एक संत एक राम। तो किसी ने कहा महाराज भगत जी राम दी सेवा तो करिए, क्योंकि राम नाल मिलना है, उस तू विछड़े अपने किते कर्मा अनुसार है, ओनू मिलना है, ओनी तो सेवा करिए। पर संतां दी सेवा क्यों करी? तो कबीर जी कहंदे इस वास्ते करनी है संतां दी सेवा कि उस राम दी प्राप्ति वास्ते, उस साईं दी प्राप्ति वास्ते जपना पेगा सतनाम श्री भाई। ते उह नाम सानू कौन जपाणगे? क्योंकि नाम ही एक नामी दे मिलन दा साधन है, और कोई साधन नहीं। कहो नानक ए तत् विचारा बिन हर भजन। एक बारी बाबा जी से नानक सर दीवान लगा सी छामा दा, तो रागी सिंह ने तारना पढ़ी, बिन हर भजन नहीं छुटकारा, देख ले विचार करके। भाई संता सिंह जी है रागी होंगे सन वड्डियां बाबे वाले, बाबा जी बिरागन लगा के बैठे सन, बिरागन रख दिती। कहन लगे रागा सिंह की पढ़े आई? बाबा जी बिन हर भजन ने छुटकारा, देख ले विचार करके। बाबा जी कहन लगे देख ले आखो श्री वाहेगुरु, अजे देखण दी गुंजाइश है, अजे सोचण दी गुंजाइश है? नहीं भाई, ओ तां सोच विचार सब कुछ साडे बापू ने कर दिती है, हुण सानू सोचण दी लोड़ नहीं, सानू विचार कर दी। बाबा जी कहन लगे जितना समा विचार करांगे ओ समा जाया जाएगा, क्योंकि मालिक ने पहले ही विचार कर दिती है। केड़ी? कहो नानक ए तत् विचारा बिन हर भजन नहीं छुटकारा, हुण असीं क्यों विचार करिए? तो बाबा जी कहने लगे पढ़ो की

जिनकी कुल मूढ़न की महा, जिन्हां दे कुल खानदान अनपढ़ सन, मूढ़ सन, उन्हां नूं पढ़ा के गुरुदेव ने निर्मले संत बना दिता। जिनकी कुल मूढ़न की महा, अखर भेव न जाने कहा, से पंडित तब पढ़ पढ़ बने, निज समता किसको ने गने, इम गादर ते शेर बनाए, बायस हंस चाल सिकराए। गिदड़ा तू शेर ते कावां तू हंस बना दिता।

का उनका सरका सर्व सुख होए। जहाँ जहाँ गुरु खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रचियारे आए। देव तेग फतेह दर्द की पैर पंथ की जी श्री साहब जी सहाय। श्री गुरु खालसा जी के बोल बाले खाल

दुर्योधन। एक बारी प्यार नाल बोलिए सतनाम, मन बिरतियां नूं एकाग्र करे। भाई साहब लिखते हैं, फिक्का होके बोलिया दुर्योधन, की प्यासी नौकरां दे घर। भाई साहब लिखते हैं,

चलो ठीक है, मेरे नाल तां तुहाडी शुरू तो बनी ही ने, भगवान नूं उलांबे दे रहे, मैं ते तुहानूं माड़ा ही लगना, पर ए भीष्म पितामह ए कर्ण वर्गे इतने योधे ते द्रोणाचार्य ए तां माड़े नहीं ना सन, असी रात तुहाडे लई इतना इंतजार किया, सारी सभा बैठी रही, तुहानूं इतना ना मन विच ख्याल आया भाई इतने वड्डे बंदे मेरे इंतजार च बैठे ने ते तुसी जाके नौकरां दे घर जाओ। सोचण वालियां गल्लां ने गुरु की साथ संगत। कई बार असी हंकार नाल बहुत कुछ सोच लैंदे, बहुत हंकार आ जांदा, साडे वर्गा कोई नहीं, लेकिन भाई साहब उन्हां मनुखां दा हंकार तोड़ रहे हैं। ये वार सुना के

राजा बोली थे, बोली जा रही, ठीक है भाई। हुण मैं बोला, भगवान ने आख्या, हुण तू गल अपनी पूरी कर ली, हां हुण मैनू जवाब दियो। भगवान ने आख्या, हुण तू सन्मुख होके सामने होके मेरी गल सुन, तेरे घर विच सबो कुछ सब, पर एक गल मैनू नहीं दिसदी, जिथे एक गल ना होवे मैं उथे भुल के भी नहीं जांदा। कि भाई साहब लिखते हैं,

गुरु का सिख हुण प्यार तो खाली हुंदा जा रहा है। भाई साहब प्रेरणा देने भगवान कहिंदा वे उत्थे भुल के भी नहीं जांदा, वाहगुरु का नाम उत्थे भुल के भी नहीं आंदा, जिन्हां दिलां विच खुद

परम सम्मान योग सत्कार योग गुरु रूप हाजरीन जियो गुरु महाराज जी की अपार अपार बख्शंदगी है जिस दे तफैल बरकत बदौलत असानू गुरु महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर जीवन दाते दी परम पावन हाजरी अंदर गुरु दे उपदेश ते उदेश सुनन दा सुभाग प्राप्त होया है। रोज रोज असा निक्की जी मौत मरदे हां ते मौत तो बाद ए परमेश्वर दी ही रहमत है जो जी दान देंदा है। पंजाबी दा अखाण है सोया ते मोया बराबर ही हुंदे ने। सियाने आखदे ने मौत एक लंबी नींद है ते नींद एक छोटे अरसे दी मौत। हर इंसान जदों रात सौंदा है ते सोया मोया बराबर ही हुंदा है। मौत तवील नींद ते नींद कुलील मौत। इसलिए गुरु महाराज ने फिर सानू जी दान दिता है ते भगती लाया है। ए गुरु दी वड्याई है या गुरमुखां दी वड्याई जो हर मिलने वाले नू ए दात देंदे हन। जी दान ते भगती लाएं हस्यों लैन मिलाए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी आगोश विच हाजिर होके सानू गुरु दे अमलीक लाल रत्ना दी प्राप्ति हुंदी है। इथो जितना भी इस खजाने नू खावीए खर्चीए वर्तीए उन्ना ही जिवें होर वध्या होया हुंदा है इस विच कोई घाट नहीं पैंदी। रत्ना रत्न पदार्थ बहुत सादर भरिया राम तो गुरु ने अपार बख्शिश करके ऐसा मौका सानू तंदरुस्ती विच सावधानी विच बकायमी होशो हवास बख्शिया होया है। तो जितना भी इस तों फायदा उठाया जाए मुस्तफीद होइए फैजजाब होइए वो साडे अपने ही भाग हन। इस शब्द विच सतगुरु जी सानू परमेश्वर दी जात पाक उत्ते परम विश्वास बंधांदे ने। दुनिया अंदर भावें कोई छोटी पद्धर दा इंसान है चाहे कोई वड्डे रुतबे फजीलत रैंक शरफ बुजुर्गी टाइटल खिताब ते उच्चतम वाला बंदा है हर इंसान मांगत है लोड़कू है मोहताज है इच्छक है। ए वखरी गल है कोई किसे तो मंगे ते फलाने तो ना मंगे लेकिन मांगत जरूर है। और नाल दी नाल कितना ही इंसान चक्रवर्ती शक्तिशाली साहेब जर साहेब जायदाद होवे मित्रां दोस्तां रिश्तेदारियां वाला होवे कारोबार वाला होवे फिर भी वो अपूरन है असमर्थ है। इन्ना कुछ हुंदिया होया भी इंसान नू किसे समर्थ शक्ति पूर्ण व्यक्ति या पूर्ण शक्ति नाल जुड़े रहन दी जरूरत पैंदी है। तो गुरु साहिब जी ने भी इस लोड़ नू महसूसिया है ते गुरु महाराज कहंदे ने कि मैं ते स्वय तजर्बे नाल निज तजर्बे नाल इत्थे ही पहुंचा हां के कितने वड्डे मनुख दी टेक लो आसरा लो कदी ना कदी बिरथा ही जावेगा। मानुख की टेक बिरथी सब जान ते इको ही गल है देवन को एक पहवान। ओ वड्डा दाता है जेनू
अनंत काल तों अनादि काल तों सारे मंगदे आए ने ते ओ दे के जतलांदा भी ने ओनू कुछ इवजाने च लैण दी भी लोड़ ने। पंथ दे वाली बेकसारा यार काशफ सरार काशफ लफ्ज है फारसी दा ते सरार भी फारसी दा लफ्ज है। काशफ हुंदा है इनकशाफ करने वाला प्रगटाण वाला इसम फाइल ते सरार सिर वाहद सरार जमा सिंगुलर प्लूरल एक बचन बहु बचन सरार मीन्स बहुते भेद। जीवन दे अनेका ही भेदां नूं सरलता विच कर देने वाला कौन है काशफ सरार गुरु गोबिंद सिंह बाबा नंद लाल जी कहते। गुरु गोबिंद सिंह महाराज उस परमेश्वर की वड्याई करते हुए बेअंतता दसते हुए वड्डे दाते दी हमद करते हुए कहते ने तू इतना वड्डा है कि रोख रूहान की रोजी ना टारे रोजी ही राज विलोक तराजक रोख रूहान की रोजी ना टारे जेड़े तेनु मनदे ने तेरे प्रेमी ने तेरी होंद दे धारनी ने तस्लीम करने वाले ने उना दी ते गल छड़ दे तेरे भगत संत भगवती महापुरुष महात्मा नेक रूहां रब प्रस्त ने उना दी ता गल की करनी उना वल ता है प्रभु तेरा ध्यान ख्याल होना ही है पर तू ते एडा बेअंत है एडा बेनियाज है रोजी हिराज विलोक तराज कर रोख रूहान की रोजी न टारे रोख मीन्स रुखियां रूहान जमा है रूह दी तू ता रुखियां रूहां नु भी ताजगियां देना है रुखियां रूहां नु भी सुखियां रूहां नु भी पालदा है जिन्हां विच लचक ना होवे लचकदार लकड़ी नु दरख्त गजा दे जांदा है जड़ां गजाज दे जांदियां ने हरियाबल रहिंदी है ते उहदे विच लचक रहिंदी है पर इक लकड़ी सुक जांदी है उहदे विच जीवन नहीं हुंदा समझो कि मर गई अकड़ गई। ए भी एक साधारण तकनी नाल वेखिए ते कमाल दी गल है इहदे चो बड़ी रास दी गल निकलदी है। जिंदा आदमी कदी नहीं आकड़दा उहदे विच लचक रहिंदी है ऐन इसे तरह जिंदा दिमाग लचकदार हुंदा है मोया दिमाग आकड़िया होया हुंदा जो बंदा आकड़दा है होमे विच आकड़िया होया उहनूं मुर्दा समझो क्योंकि जिउंदा तां कदी आकड़दा नहीं मुर्दा ही आकड़दा है। पर गुरु साहिब जी इत्थे कहिंदे ने सच्चे पातशाह तूं बड़ा बेअंत है जो रुखे ने सुके ने जिन्हां च लचक नहीं ते मुनकर ने ते तों तेरी होंद तों इनकारी ने उहनां नूं भी तूं अपने गैबी खजाने विचों वड़ मुलियां दातां दे ही चलिया जांदा है। हवा एक छिन एक श्वास ना आवे ते रचना मुर्दा हो जाए धुप मट्टी ऑक्सीजन होर अनेकां पदार्थ तू अपने गैबी खजाने विचों देंदा ही जाना है जो तेतों मुनकर ने तेरियां दातां भी ले जांदे ने तेरियां बख्शियां भी मान जांदे ने हे मुने परमेश्वर तेरियां नेमतां भी मान जांदे ने तेतों मुनकर भी ने पर फिर भी तू उन्हां दी परवरिश करदा जाना है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे ने रोख रूहान की रोजी ना टार तो इस शब्द अंदर साहिब गुरु अर्जन देव महाराज श्री गुरु रामदास महाराज कल्याण राग दे इस शब्द अंदर फरमांदे ने कि मैनू ते ओही वड्डा दाता दिसिया है मैं हुण निश्चा कर लिया है कि दूजे पासों मंगिया पूरी नहीं पैंदी ते नाले किसे देवी देवता हूरो मलायक फरिश्ते कोलो मंगा ते उन ते मंगके ही देना है मंगत्या कोलो मैं क्यों मंगा मेरे गुरु ने मैनू सोझी पवा दिती है गुरु नानक पातशाह दे दरों मैनू सोझी मिल गई है कि परमेश्वर ही वड्डा दाता है ते जे ओनू मंग लईए ता फिर इधर उधर मुख दंत रसन कस जाए इधर उधर मंगण दी लोड़ नहीं रह जांदी हाजत नहीं रह जांदी ओ सब हाजतां रवा करन वाला मालिक है ते मैं हुण इस निश्चय ते पहुंचा हां किथों मंगा हो कौन है इसते मुकाबले दा दाता साचा साहिब है ते वड्डा दाता है उसदे भंडारे अखुट ने। वाह
मुहे दूजी नाही ठौर जिस पै हम जावे। दुनिया विच असी वेखते हां कि एक मांगत जदों घर आ जाए सदा देवे या किसे दुकान ते कोई पैसा मंगना आ जाए, कई बार वेखण चांदा है मालिक मकान या मालिक दुकान कहंदा है माफ करो बाबा माफ करो बाबा, वो अगे टुर जांदा है। सारे बाजार च गया माफ करो बाबा ही हुंदी गई, कासा ते कचकोल खाली लिया खाली रहा। किसे प्रवीण पुरुष ने किया कि तू सारे बाजार दुकाना ती लंघे आए, बड़े बड़े इत्थे स्टोर सन, बड़िया बड़िया दुकाना सन, पुश्त दर पुश्त चलन वालिया, ते बड़े बड़े दाते भी बैठे सन उत्थे, पर तेरे कासे अंदर ते दमड़ी भी नहीं है, सिक्का भी नहीं है, गया नहीं है तू। उन्हें कहा जी गया तो सा, फिर होया की है। जदो मैं दुआ कीती, जदो इल्तजा कीती, जदो खाली ठूठा अगे कीता, ते उन्हें अगे कहा माफ कर बाबा माफ कर बाबा। इसे तरह मैं सारे घर दे अग्यो दी आया, बीबिया माइया ने खैर तक कोई नहीं पाया, अगे जाओ बाबा जी अगे जाओ, इदा कहंदे। मैं अगे तो अगे टुरदा गया, उन्हां दे माफ करो बाबा कहन नाल टुरदा गया, बाजार मुक गया, घर मुक गया, इसलिए ठूठा खा लिए। उन्हें कहा सजना जे इस तरह अगे तो अगे जावे तइयो हाल हुंदा है, पर जे तू किते टिक के किसे एक दे परवासे उत्ते किते यकीन नाल वासिक यकीन नाल मुस्तकम इरादी नाल बह जांदा ते मैनू यकीन है तेरा ठूठा सखना ना रहंदा। हुंदा भी एवें है, किसे आख्या माफ करो बाबा, कम काज करके फिर आए, फिर उथे खलोता, तेनू क्या सी जा अगे, फिर कम लग गए, तू फिर इथे खलोता है, गया क्यों नहीं? वो पक्का मंगता है ते निश्चय वाले आखन लगा मैनू अगे कोई इनविटेशन आया है जी, कोई मदाऊ कीता है किसे ने, किसे निमंत्रण दिता है पे इथे अगे आ जा, तुसी ता कही जाओ अगे चल माफ कर, मैं ता हुण तेरा दर मान लिया है, तेरी दहलीज मान ली है। अंत फिर ओ कुछ ना कुछ दे के छुटकारा करदा है। गुरु रामदास जी कहंदे ने कि मैनू ए निश्चय हो गया है मुहे दूजी नाही ठौर जिस पे हम जावे जावेंगे। तो जब तक कोई मंगता टीठ होके नहीं मंगदा, जब तक कोई पूर्ण निश्चय नाल टीठ होके नहीं मंगदा, टीठ कहंदे ने तोरी जाए कढ़ी जाए मोड़ी जाए फिर उथे ही रहना, जब तक कोई टीठ होके नहीं मंगदा उदो तक दाता कुछ नहीं देंदा। श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने परमेश्वर नू भी ऐसा ही एक जगह आख्या ढीठ शब्द अलकाप वरत्या है, आडीठ धर्म आडीठ धर्म अत ढीठ करम। वाहेगुरु तू भी अपने इरादे दा बड़ा पक्का है, ये तो मुराद है अत पुख्ता आडीठ धर्म अत ढीठ करम। जाप साहब कई बारी अरदासा करते जाओ मंगते जाओ ते उन्हें जो करना है वो करन कारण समर्थ हो कर दई है। आडीठ धर्म अत ढीठ करम, जब तक किसे मंगते दे विश्वासी दे डिसाइपल दे मौत के दे फिदबी दे विश्वासी मुरीद दे जग्यासु दा अत ढीठ निश्चा ना हो जाए परमेश्वर उत्ते, कंप्लीट सरेंडर ना हो जाए, आपा समर्पण ना कर देवे, उदो तक कई बारी तेनू शक्कां शकूकां दा शुभात दा शक होना पैंदा है शिकार होना पैंदा है। इसलिए गुरु साहिब जी आपने तजर्बाकार जिंदगी विचों कहंदे ने कि परमेश्वर दे दर नू छड़ के जाना किते नहीं चाहिदा, क्योंकि मैं निश्चय धार लिया मोहे दूजी नाही ठौर जिस पे हम जा